आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें आप जाए करें

लावही ते लंगी देव करी आई वसंती संदूर सहाई सर सहरी लै पार जा संगलाई पांच आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिम मंगलन सुहाए सरस बान वाहे विनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट

कमल कुसुम चंपक के नम गौराव कान रा कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जन सम्मिल श्री राग वै गावह पाचो संग परंगन लावह बैरारी करनाटी तरी गौरी गावह आसावरी ते पाछे सिंधवी लापी श्री राग सिंह पाचो थापी सालू सारंग सागरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुम हमीर अष्टमी राग वै गावह पाचो संग परंगन लावह सूरठ गुण मलारी तुनी पुन गावह आसा गुन गुनी ऊंचे सुर सो

भावना यकीन दीन कैसे क्या तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूं जोगिया बैरागी बना, कबहूं संन्यास भेस बन कै दिखावई। कहूं पौन हारी कहूं बैठे लाए तारी, कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी, कहूं डंड तारी हो गए लोगन भरमावई। कामना अधीन सदा कामना अधीन परे नाचत है नाचन सो, ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे सीत काल, कुंचर औ गदह अनेकदा पुकारही। कहां पयो जो पै कलवत्र लियो कांसी बीच, चीर चीर चोरटा कुठारण सो मारही। कहां पयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग, धार मा टार डार फांस ठग मार मार डारही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचारही। ताप के सहित जो पै पाई है अतापनाथ, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पै पाई अजाप देव, पूदना सदीव तू।

देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मानस सबा एक पैन एक को प्रमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेस को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आदस आप को रलाओ है अल्लाह अपेक सोई पुराने ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुका फेर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डुपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही वह समाहेंगे। किते कछ मच किते उनको करत पच, किते अछ वच हो इस पाछी उड जाएंगे। किते नव बीज अछ पच को करेंगे पच, कीतक प्रताच हो इस पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो अतेज मैं अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते, जल मैं डुबत के ते आग मैं जरता है। के ते गंग बासी के ते मदीना मक्का निवासी, के तके उदासी के प्रमाए ई फिरत है। करवत सहत के ते भूम मैं गटत के ते, सुआ पै चढ़त के ते दुख को परत है। गैन मैं उड़त के ते जल मैं रहत के ते, ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे जापसी। कस हारे चंदन लगाए हारे, चुआ चार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे, मड़ी मट लीप हारे, पीतन लगाए हारे छापसी। गाह हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर साब, पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद, न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग, न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग, न स्मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग, न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग, न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न पामंग, अलेखंग अभेघंग अजूनी स्वरूपंग, सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग।

मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभिखंग अयुनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अचयाद द्वै अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अपंगे नमो आद अपंगे किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आदत वह अविनाशी परेयं परा परण पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूति न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधंग न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स्नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न ताते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुपूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभिखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग

ना शोकं ना साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न सर्वं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं सरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औषधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी

कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह के देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग पोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आर बीतोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देव पाक्या कहूँ देव पानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजतानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र तारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज पाक्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागपानी कहूँ गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा

अन तुट तेजन खुट भंडार दाता दुर सर्वंग प्रकार अनुपूत तेजन छिजगात करता सदीव हरता सनादासन अडोल अनुपूत कर्म दाता दयाल अनुपूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र

नहीं, जोग जुगत जय त्रास आस नहीं, भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखै अपंग, जय नेत नेत चिरंत बीज, जय अलख रूप कथत कतीब, जय अलख रूप आसना।

शास्त्र सिमरत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई प्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जा कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदपदास पायत नांत कई करत कोट विद्या विचार।

ना सन्मंत्र है, ना मित्र है, ना तात है, ना मात है, ना अंग है, ना रंग है, ना संग है, ना साथ है, ना दुख है, ना दाग है, ना द्वैख है, ना देह है, ना सिंह है, ना स्यार है, ना राव है, ना रंक है, ना मान है, ना मौत है, ना साक है, ना संक है, ना जच है, ना गंधर्व है, ना नर है, ना नार है, ना चोर है, ना साहु है, ना साह को कुमार है, ना देह है, ना गेह है, ना देह को बनाओ है, ना छल है, ना छिद्र है, ना छल को मिलाओ है, ना यंत्र है, ना मंत्र है।

है न रेख है न कर्म है न धर्म है न अजन्म है अपेघ है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंक है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज

गजादपि नरादपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त याद जीव डे।

कारणं पुष्ट कारणं सर्वके प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वके अनकाम सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजभा सर्वभुक्ता सर्वजुगता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्वसिमृत सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वकर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन याद देव अखंड भूमकाश जले थले मह जपत जाप अमंड सृष्ट चार विचार।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रति चचुरासुर मारण पतित उदारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होसी महासुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधुंसन मख मथे दानवी प्रहासन नरक निवारण नदम उदारण उर्द अति जय जय हो सी महासुर मर्दन रमक परदन आदि बिरते डावरू डबंक पबर पवंक पूजा फरंग

बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे अनरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पताल आकाश अनले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दुख दहंती ज्ञान जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रता

कई मोड़ पात्र पूजा करंत कई सिद्धनाथ सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अंद्वै अनास सब रोग सोग ते रहत रूप अनपह अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरद दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजक नाथ जल तल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी ना जाए जह रूप रेख कह पास तास कह कौन पीख कह नाम तास है कवन जार जय सत्र मित्र नहीं।

उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपाल युद्धंग अनूप जह रूप रेख नहि रंग राग जन छिजती जन पिज अदाग जल तल मही बन तन तुरंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाए जह पैर पार दीना न दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र।

अखंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार ना पाए सके पद्मापत वेद कदेव अभेद उचार रोजी ही राज विलोकत राजक रोख रुहान की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अंग मेव न पीव लखियो परम शिव परमाए वेद पुराण कदेव कुरान हसीव थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद स्योकन श्री पद्मापत पाए आदि अनंत गाद द्वैख सो भूत भविक भवान अपै है अंत विहीन ना तम आप अदाग अदोख अछिद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवै है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय देह विहीन सनेह सबूतन देह विरक्त अगेह अच्छा।

अत्र के चलैया छित छत्र के तरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महा

देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग तान को अपीस कही अत है। रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण और काहू पैना दीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाचे पहुचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। ये ते इंद्र द्वार के ते ब्रह्मा मुख चार के ते कृष्णा अवतार के ते राम कही अत है। के ते ससरासी के ते सूरज प्रकाशी के ते मुंडिया उदासी जोग त्वार कही अत है। के ते महादीन के ते ब्यास से प्रवीण के ते कुमेर कुलीन के ते जच कही अत है। करते हैं विचार पैना।

सुंदर स्वरूप है कि भूपन को भूप है कि रूपों को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय विनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंता है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोखत है के वृद्धता के बासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अपीव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है नान नार है विश्व को पर्ण है के आपदा को हरण है के सुख को कर्ण है।

जय गुरु गुरु निवास अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दी हाजरिया भरदे होए कीर्तन दे सत्काव दे संगता वालों बेनत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन बख्शना दे अरोगता बख्शनी आसा मन सत संपूर्ण

ते पाऊ सेवक सेख हमारे तारियह चुन चुन सत्र हमारे मारियह आप हाथ दै मुझे वरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा सिरियस धुज्यू कर।

सिमट भयो शंकर इकठा सगरे सृष्टि दिखाए अचंभा आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे असुध जताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखद होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे।

जय प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग में दो चला राख आप मोहे अवर ना दल तुम मम करो।

0: सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा क्रम सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लग करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कछ ने कछ महला पहला
1: बुढ़ियाई जा बड़ा ना बुढ़ियाई जा सच ने आओ बुढ़ियाई जा नह जल थाओ बुढ़ियाई जा ने लाओ बुढ़ियाई भुजे सफाओ बुढ़ियाई जा पुछन दाओ।

कोई सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश।

विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग विरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सुला विस्माद ओजड़ विस्माद राय विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद विखे आदर।

नौ तरह निरंकार है, न लज नरक न जाइए, जियो पिन सब सदा देखा जया गवाई है। जे लोड़े चंगा अपना कृपनोनी सदाई है, जे जरवाना पर हरे दरवेश करे।